0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwane ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwane ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhansri Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai.
1: Jai Bole Bhole Baba ki
2: jai.
1: So, in Shiva Purana, whatever talks, the Swastani Purana also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in the sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality, to Shiv Puran hamare liye aur sare vedadi ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है. और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा, वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजंट इट. So Hanuman is a

Bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and Bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. Doubt after doubt, doubt after doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman paritajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman paritajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo mokshayishyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki sarva dharman matlab ki koi bhi cheez aapka जो दानवीय चीज है कोई भी असुर तत्व है सबको छोड़ के एक निर्वित्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो यू विल क्रॉस द रिवर इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, Yavat jivet sukham jivet. As long as you live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak theory is that said. But in spirituality it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, Trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize when we summarize that the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the trigona, proton, neutron, and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And... almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, ask Ali, Aj Hamne Kya Sunliya Ki Rudra Samhita Me Pahle Se Abhi Tak Kya Hua Ki Parvati Ji Ka Devotion Toh Hamne Sunliya Tha Aise Karke Jalandhar जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है आप कहीं भी रहो जैसा भी रहो कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान तुलसी का व्रत था तो ऐसे करके फिर शिवजी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी जालंधर के लिए वृंदा जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था
तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है। शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: हो गया जी, पुनः हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे।
1: Fan is in which direction?
0: पुष्प इत्यादि हैं
1: हाँ
0: ठीक है, आप में पुष्प ले लीजिए। अभी क्या लिया है अभी आपने हाथ में?
1: पुष्प और जल और अक्षत।
0: ध्यान करना है गौरी गणेश जी का। ओम मां गणानां त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुंघवामहे। भजो मम अहम जानी गर्वदमात्मजासि जासी गर्वदम मां अम्बे अम्बिके अम्बालिके, नमानयति कश्चन सशस्तशिवकः, सुभद्रिकां काम्पीलिवा पूर्वस्वः, गणेशं विकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। परी गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना अथवा भोले बाबा के सामने। पुनः फिर अक्षत पुष्प लेकर के प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान का और अग्नि देवता का ध्यान कर लेना, अर्थात दीपक में स्थित जो देवता है। ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः, सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। आक्ष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्न। पूर्वस्व प्रत्यक्ष देवता सूर्याय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। फिर से अक्षत पुष्प लेकर के क्षेत्रपाल में स्थित भैरव देवता का ध्यान करना है। उस स्थान के जो देवता होंगे उन सभी को प्रणाम करना है। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभद्राः, स्थिरैरङ्गैश्चिष्टवागस्तनोभिर्वसेमहि देवहितञ्जदायो। पूर्वस्व क्षेत्रपालाय भैरवाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे, कुछ उसमें द्रव्य रख लेंगे। तीन बार विष्णु विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमन्मुकुंद सच्चिदानंद आज्ञा प्रवर्तमान से जीवनो ब्राह्मणों ने द्वितीय पर्वते वैवस्वतमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे करे प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गत काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग आदि नाना तीर्थ युक्त कर्म भूमा मदरे काया श्रीभाग नर्मदा सुप्रदेश से देव ब्राह्मणा सिंधु वीर विक्रमादि समय था अशीतुत्तर त्रिशत संख्या परिमिते शुभ नाम संवत्सरे पराभव नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे शुभ ऋतौ वर्षा ऋतौ षष्ठ्यां तथा उत्तर उत्तर सप्तम्यां तिथौ गौ नाम करने उत्तर उत्तर बालव नाम करने शोभन नाम योगे उत्तर उत्तर सौभाग्य नाम योगे पूर्वा भद्रपाद नाम नक्षत्रे उत्तर उत्तर उत्तरा भद्रपद नाम नक्षत्रे सोमवासरान्वितायां मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्य कुंभ राशि स्थिते श्री चंद्रे उत्तर उत्तर मीन राशि स्थिते श्री चंद्रे यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम उस क्षेत्र का नाम उस
1: श्रीलकी
0: जिले का नाम श्रीलकी नामाख्य देशे
1: नहीं चेक रिपब्लिक देश है, श्रीलकी नामक स्थान है।
0: चेक रिपब्लिक नामाख्य देशे श्रीलकी नामाख्य जनपदे शुभ स्थाने भगवत सन्निधौ अपना नाम और गोत्र का नाम लेना है।
1: सम्यक तर्पणे मको तर्पणम्।
0: शुभ नाम

0: शुभ गोत्रोत्पन्नो हम, कहना है मम,
1: मामा,
0: आत्मनः,
1: आत्मनः,
0: श्रुति,
1: श्रुति, स्मृति, पुराणानां,
0: स्मृति, पुराणोक्त, पुण्य,
1: पुण्य,
0: फल,
1: फल,
0: प्राप्त्यर्थम,
1: प्राप्त्यर्थम,
0: ऐश्वर्य,
1: ऐश्वर्य,
0: अभिवृद्ध्यर्थम,
1: अभिवृद्ध्यर्थम,
0: अप्राप्तलक्ष्मी,
1: अप्राप्तलक्ष्मीः,
0: प्राप्त्यर्थम,
1: प्राप्त्यर्थम,
0: प्राप्तलक्ष्म्याः,
1: प्राप्त्यर्थम,
0: चिरकाल संरक्षणार्थम। आपके जो भी शिष्य हैं, जो इस पूजन में सहयोगी हैं, उन सभी के कल्याण के लिए आपको मन में ही संकल्प लेना है। सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके स्वायं राजद्वारे व सर्वत्र येषु विजय लाभादि पुण्य फल प्राप्त्यर्थम ई जन्म जन्मांतरे व सकल दुर्तोपशमनार्थम चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम व जायमान अरिष्ट निवृत्त्यर्थम स्वीय साम सदाशिव चरण कमलेषु प्रीति प्राप्त्यर्थम रुद्राभिषेक कर्म अहम करिष्ये सामने ही छोड़ देना है। ओम आज जागृतो दूरम दैत दैवंत दुसुप्त सुत थैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुनः अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर के गौरी गणेश जी का ध्यान करेंगे। यहाँ से हमारा क्रम चल जाएगा पूजन का। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशुकः सुभद्रिकां काम्पीरवासिनीं भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है गौरी गणेश जी के ऊपर, चढ़ा करके उनको प्रणाम करना है और उनसे पूजन करने की आज्ञा मांगना है। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे। ओम मा जदक्रंद प्रथमंजा समुद्यम दुतवा पुरी खात सेन सपक्ष हरण सभा उपस्थित जातंते अरवन्न भूर्व स्व कार्तिकेयाय नमः। ध्यान ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के कुबेर जी का ध्यान करना है। ओम मा कुविदंग जवमंतो चिदिथंदात्यन पूर्वं वियूय इहे हैत्थांकणुहि भोजनानि देवरिहुको नम उक्तिंज जन्ति भूर्वस्व कुबेराय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा देना है। प्रार्थना करके पुनः लेकर के अक्षत पुष्प नंदिकेश्वर जी का ध्यान करना है। ओम मा आयंगौः प्रश्नकमी दशदन्मातरं पुरः पितरञ्च प्रयंस्तः भूर्वस्व नंदिकेश्वराय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के नाग देवता वासुकी जी का ध्यान कर लेना है। ओम मा नमो सुसर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजेन्तरिक्षे जे दीवतेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। भूर्वस्व वासुकी नागाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बिल्वपत्र है क्या? ठीक है, अक्षत पुष्प लेकर के शिव जी का ध्यान करना है। ध्याये नित्यं महेशं विचित्गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वर्षमुखवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मम गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भूर्भुवस्वः साम सदाशिवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पहले पूर्व पूजन करेंगे, बाद में उत्तर पूजन करेंगे। भगवान का चार बार जल से अभिषेक करेंगे, पाद्य अर्घ आचमन और स्नान। भूर्भुवस्व भगवते साम सदा शिवाय नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि, अस्तिवर्गं समर्पयामि, मुख्याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा सा अभी सामग्री चढ़ाएंगे, दूध दही वगैरह, बाद में उत्तर पूजन के बाद सामग्री चढ़ाएंगे, थोड़ा दूध चढ़ाएंगे। भगवते साम सदा शिवाय नमः। पयस्नानम् ओम मा पयः पृथिव्यां पय ओखदीक पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तुमजं मा। भगवते साम सदा शिवाय नमः। पयस्नानम् समर्पयामि, पयस्नानान्ते शुद्धोदके स्नापयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नानं भगवते साम सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नानम् दरिक्रावणो अकारिखंष्णो ऋष्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरतृण आयो वङ्कितारिखदा भगवद्गीतां सदाशिवाय नमः। दरिस्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदक

0: प्रणमामि भगवते साम सदाशिवाय नमः। शहद से स्नान कराएंगे, शर्करा। ओम मा अपांगुर समद्वय सगुं सूर्जे संतगुं समाहितं मा अपांगुर सजो रसस्तंभो गृह्णामि तमुपयाम गृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येकतेजोनिरिन्द्राय त्वाजुष्टमं मा भगवते साम सदाशिवाय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानन्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मधुस्नानं मधुवाताहृताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोखदीः मधुनुक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्पुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। भगवते सां सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि शुद्धोदकस्नानान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा सा तिलक अगर हो तो गंधोदक बना करके गंधोदक से स्नान करा दीजिए। ओम मा आयंगो हो प्रश्नक्रमी रसदन मातरम पुरः पितरं च प्रयंस्त्वः त्वां गंधर्वा अखर स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोख देशो मो राजा विद्वान निष्माद मुच्यत। भगवते साम सदा शिवाय नमः। गंधोदकेन स्नापयामि गंधोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि। शुद्ध जल से स्नान करना है और रुद्र सूक्त से 15 मंत्रों से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद विनियोग इत्यादि करके अभिषेक फिर करेंगे। अच्छा, ये जूठा पात्र तो नहीं है?
1: ना
0: ठीक है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अभिषेक। हरि ओम ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम मा नमस्ते रमण्यव उतो तैकवे नमः बाहुव्याम तते नमः जातेर्दृशिवा तनुरघोरापापकाशिनी तयान सन्भाषन्तमया गिरिशन्ता विचादशीः ङ्गिरिशन्तहस्ते भिवर्तस्तवे शिवाङ्गिरतृताङ्कुरुमाहि पुंसीः पुरथं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि जथानः स्रोमि जगदैक्ष्मगुं सुमना असत अर्यवोचद्विवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिकक अहिंश्च सर्वाञ्जिं भयन् सर्वास्य जातधान्यो धराचीः परासुव असौरस्ताम्रो अरुण उतपभ्रुः सुमङ्गलः जय चैन गुं रुद्र अवितो दुःश्रुताः सहस्रशो वै काङ्ड ईमहे असौ जो वसपतिनीरग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदशन्नदशन्नदहार्जः सदसोमृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षायमीडुके अथो जे असशतमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वनसमुभयोरात्मोजाम्म जास्यते हस्तैकवः पराता भगवो बप विजिन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्नसजा इकव आवृषनिकङ्गदिः जाते हे तन्मीरुषमास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् सोमयक्मया परिभुजा परिते तन्मनो हे तस्मान् मृणस्तः अथो जे कुलिस्तवारे अस्मन्निदेहितं न अवतते धनुषभुं सहस्राक्षसते कुदे निशीर्षल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नाथताय दृष्णवे उभाभ्याम तते नमो बाहव्यन्तव धन्वने मानो महान्तमतु मानो अर्भकं नानौक्षन्दमतु मानौक्षितं न मानो बदीहे विदरं नोतमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्धरीरिखः मानस्तोकेतन ये मान आयुषिमानो गोकुमानो अशेकुरीरिखः मानो वीरान् द्रवामिनो बदीरिह विद्मन्तः सदनित्वा हवामहे नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते साम सदाशिवाय नमः। पूर्वपूजनं समर्पयामि भगवते साम सदाशिवाय नमः। सामने उंगली लगा करके भोले बाबा को जल चढ़ा देंगे पूरा। सामने उंगली लगा करके सृंगी में भोले बाबा को पूरा जल चढ़ा देंगे। ये पूर्व पूजन हमारा लगभग संपूर्ण हुआ। भगवान को तिलक वगैरह करके और फिर पुनः अभिषेक करेंगे।
1: तिलक करने के बाद पुनः अभिषेक करेंगे?
0: हाँ, तिलक और थोड़ा सा धागा वगैरह चढ़ा करके ये पूर्व पूजन हो गया भगवान का। उसके बाद फिर पुनः अभिषेक करेंगे।
1: अभिषेक का पात्र छोटा पड़ेगा, पुरुषोक्त तक करवा दो।
0: ठीक है।
1: अब क्या तिलक
0: पंचम अध्याय तो या ऐसा कर लेना कि नहीं नहीं ऐसा कर लीजिए कि जो जल वगैरह भरा हुआ है उसको कटोरी वगैरह से किसी को कह दें तो वो निकालते जाएंगे।

0: भगवान को थोड़ा सा तिलक कर दीजिए। त्वांगं दर्वा अखन स्वामिन प्रस्ताम बृहस्पति त्वामोख दे सोमो राजा विद्वान्मादमुच्यता। थोड़ा सा अक्षत लेकर के बिल्वपत्र की भावना करके भगवान को बिल्वपत्र चढ़ा दें। त्रिदरम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम भगवते साम सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राभाव यक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि।
1: This fills up your
0: एक
1: bank
0: चांदी का
1: account.
0: बिल्वपत्र बनवा लीजिए।
1: ठीक है. As this fills up your slowly empty it with this
0: थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान के 11 नाम हैं तो उनको चढ़ाना है। उल्टे हाथ में लेकर के
1: As
0: थोड़ा
1: this
0: थोड़ा सीधे
1: fills
0: हाथ
1: up
0: से चढ़ाते जाएंगे।
1: with this empty.
0: ओम अघोराय नमः अक्षतान
1: Oh.
0: समर्पयामि। ओम पशुपतये नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम शर्वाय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम विरूपाक्षाय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम विश्वरूपणे नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम त्र्यंबकाय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम कपर्दिने नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम भैरवाय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम शूलपाणये नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम ईशानाय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम महेश्वराय नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम उमायै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम शंकरप्रियायै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम पार्वत्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम गौर्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम काल्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम कालिंद्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम कोटर्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम विश्वधारिण्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम ह्रां नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम ह्रीं नमः अक्षतान समर्पयामि। ओम गंगा देव्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। जो पूरा अक्षत है उसको लेकर के पूरा चढ़ा देना है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसुजातावतरेकः आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामते मा तस्मै देवाय हविकाभ्युदये मा। एक पुष्प में गंध अक्षत लगा करके भोले बाबा को चढ़ा देना है। भूर्भुवस्सुवः भगवते साम सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। ये पुष्प इत्यादि ये सारी चीजें हटा करके अब न्यास कर लेना है। समय हमारे पास कितना है अभी उसी हिसाब से
1: 40 मिनट या 30 मिनट. 40 मिनट में पूरा अभिषेक और आरती श्रृंगार सब कुछ.
0: ठीक है न्यास कर लीजिए और उसके बाद फिर विनियोग करेंगे और फिर अभिषेक करके तुरंत हृदय का स्पर्श कर लेना है। ओम मा मनो दुजो त्रिपुता मा जस बृहस्पतिर्जन्म इमं तनो तुरशंजन समिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठां हृदयाय नमः। ओम अवोदग्नि समिदा जनानां प्रतिदेनं विवाजति मुखा सम्मा जवाय प्रयामुज्जिहाना प्रवानवास सतेनागमक्षं सिरसे स्वाहा। ओम मूर्धानंदी वो आरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृत आजात मकरिम कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्रञ्जनयन्त देवाः। ओम शिखिकाये विषट मर्माणि ते वर्मणाश्चादयामि सोम स्वाराजामृते नानुमस्ताम् मा उरोर्वरीयो वृणस्ते प्रणोतु यन्तन्त्वानुदेवमदन्तोम् कवचाय हुम्। ओम मा विश्वतचक्षुर्तभिषतो मुखो विषतो बाहुर्विषत्पादः सम्बाहुव्यन्तमन्तसम्पादत्रिर्द्यावा भूमिजनयन्त देवं नेत्रत्रयविषट। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो वशे खुरीरिखः मानो व्येनान द्रवामिनो बधिरे कौन्ता सदित्वा हवमे अस्राय फट। भगवते साम सदा शिवाय नमः। हाथ में जल लेकर के विनियोग कर लेंगे अभिषेक के पूर्व। ओम अस्य श्री रुद्राध्याय पृष्ठमहामंत्रस्य घोर ऋषि अमृतानुष्टुप छंदा संकर्षक मूर्ति ज्योतिकावादित्य परम पुरुष से सह रुद्रो देवता नमस्ते रुद्र इति श्री वीर्यम शिवाय सत्य से उतारे कील कम रुद्राध्याय पृष्ठ महामंत्र पाठे विनियोग। छोड़ दीजिए भोले बाबा के पास में ही। ठीक भगवान का अब अभिषेक करेंगे। दूध इत्यादि जो भी सामग्री उपलब्ध है हमारे पास उन सामग्रियों से ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम मा ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम अहम जानि गर्भदमात्कमजासि गर्भदं न अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सरस्वती।

शिवाय नमः शिवाय। बाकी लोग जो बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।

नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः

शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव वृषभध्वजाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव वृषभध्वजाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय

0: भगवते श्री शाम सदा शिव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रृंगार हो गया है भगवान का,
1: न्यास करवा दो।
0: हाँ ये जल छोड़ दीजिए, हृदय का स्पर्श कर लीजिए। ओम मा मनो ज्योतिर्कृतामार सब बृहस्पतिर जन्मि मंतनो तुरशन नगुं सहिमंद धातु स्वे देवा सहिमादयन तामों प्रतिष्ठयाम हृदयाय नमः। ओम अभोदिग्नि ही समिदा जनानां प्रतिदेन विवाजति मुखा सम्मा जप्रा इभ्रिया मुज्जिहाना प्रभा नमः सुसतेना कमक्षम शिरसे स्वाहा। ओम आयंगौ प्रस्मृमि दशदन मातरम पुरा पितरं च प्रयंस स्वं शिखाय षट ब्रह्माणि ते ब्रह्मणा श्रादयामि सोमस्था राजामृतेनानुसाम उरोर्वदीयो व्रणस्ते कृणोति यन्तं त्वानुदेहमदन्तुं कवचायहम्। ओम विश्वत शक्षुरत विशतो मुखो विशतो बाहुर्त विशत स्वात संदाहुर्यन्धमति संपत प्रेरदया वा भूमि जनयन देव एकं मित्रत्रया विशट। ओम मानसो केतन ये मान आयुषि मानो गोकुमानो श्रीखुरी मानो वीरान द्रवामिनो वदेहता हवामहेश्राय पट। पुष्प अक्षर लेकर के भगवान का ध्यान करेंगे। ओम असंख्याता सहस्राणि जेरुद्रा अधिभूम्यं नातेकां सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मत्सि गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम गज विश्वनाथम। भगवते साम सदा शिवाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान का इत्र इत्यादि सारा लेपन हो गया है, श्रृंगार हो गया है,
1: आरती
0: भगवान, हाँ धूप दीप नैवेद्य फिर आरती। धूप की यदि व्यवस्था है तो ठीक है, दीप दिखा दीजिए भगवान,
1: दीप दिखा दिए,
0: नैवेद्य में यदि कुछ है तो
1: है,
0: दिखा दीजिए भगवान।
1: और फल है
0: भगवान को तीन बार आचमन करा दीजिए, फल का स्पर्श करके फल चढ़ा दीजिए। ओम जाहा फल निर्जा फला पुपा जा शब पुणी बृहस्पति पुसंसानो सदा शिवाय नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि नमस्करोमि। कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान को। हिरण्यगर्भः समवर्तकाग्रे पूतस जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामते मा तस्मै देवाय हविखा विधेम मा भूर्वस्व भगवते साम सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। करोत्वर्धन के लिए गंध ले लीजिए, दोनों उंगलियों में, अनामिका उंगली में जिसमें रिंग फिंगर। ओम मा अगुं चुनाते अगुं चुहु प्रचिताम परुखा परुहु गंधसे सोम तुमदाय रसो अच्युतः भक्ते साम सदाशिवाय नमः। करोत्वर्धनार्थे गंधम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान को पुष्प से अलंकृत कर दीजिए। अहिर्व भोगैः परजेति बाहुन जाया हेतिम परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा वायुनानि बुद्मान पुमान पुमागुंसं परिपात विश्वता भक्ते साम सदाशिवाय नमः। नाना परमल द्रव्याणि समर्पयामि नमस्करोमि। आरती की थाल तैयार है?
1: हाँ तैयार है, सब तैयार है, उधर भी तैयार है।
0: मंत्र आरती करेंगे या
1: आप गाओ ना अपना जो भी आरती करनी
0: ठीक,
1: या हम अपनी गा लें?
0: हाँ तो ठीक है, वो भी चलेगा।
1: ओम शलपुर जी
0: मंत्र आरती पहले
1: की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री माधवानंद सदगुरुदेव भगवान की जय।

0: साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्यादीपं सर्वसत्यम् ॐ नमो प्रभुदीपविनाशी आपि ब्रह्मा आपि विष्णु आपो किल शिवासि आपो नारदय आपो शारदय आपो जय शुक्रासि आपो ध्यानी आपो ज्ञानी आपो यो प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौर्के वासी आपो वेदो के ज्ञाता आपो भक्तुर्वासी आपो सतना के दाता आपो नित स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभुदीप ब्रह्मानंद अनुर्वासी असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान्मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान्मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान्मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् नाहं करता प्रभुदीपकर्ता महा प्रभुदीपकर्ता हि केवलम् ओम शांति ओम शलपुरुष महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्री दीपनारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सदगुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय श्री शंकर भोलनाथ की जय गजानन जी महाराज की जय हरण पार्वती पते हर हर महादेव शंभो
1: हाथ में लेकर के जलेन शीतलीकरण पुष्पेव देवताय वंदनम आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम आत्म कल्याणार्थे देवताय वंदनम पुष्प लेकर के पुष्पांजलि ओम माजनेन जनमय जंत देवा सानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दय त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधि राजाय प्रसयेने नमो वयम् वैश्रवणाय प्रमहे समे कामान् काम कामाय प्रमहियम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वाय शान्तार्धापरार्धा कृतिव्ये समध्यपर्यन्ताय एकराडिति तदव्येष्लोको विगितो मरुतः पारमेष्ठारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवाः सवासदिति ओम दिशवतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वात्स्वात संबाहुव्यां धमति संपतितं द्यावा भूमि जनयन्तेव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजं पकपाटलाब्जे कुन्नागजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रस्फुट नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाग्रहाणपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्समर्पयामि एक दो पुष्प लेकर के सभी का स्पर्श करवा दीजिए छह किसी को कह करके और वो पुष्प फिर चढ़ा देंगे
0: And let everyone touch this flower, and then I will offer it.
1: जब तक दूसरी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा, क्षमा प्रार्थना करनी। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः इमां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हरः मंत्रहीनं पिजाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवते साम सदा शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में जल लेकर के जो हमने पूजन किया है वो सभी भगवान को समर्पित करना है, कहना है अनेन सफल अर्घ्येण सफलः अस्तु सदा मम मया यत शिव पूजन कृतेन तत सर्वं शिव चरण कमलेषु प्रियन्तां न मम अनेन सफलार्घ्येण सफलोऽस्तु सदा मम। भगवते श्री साम सदा शिवाय नमः। भगवान को प्रणाम कर लेंगे आसन के नीचे जल छोड़ करके। ले शंकर।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

श्री श्री देव पुरी सा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

शांति शांति शांतिर्भवतु। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Blessed self, dear bhaktas, spiritual seekers, today is the day that we are all together here in our holy ashram.

The Brahman is not a form of the God. It's just like a sky, space. But it is that very pure, holy, everlasting oneness that is called Brahman. It has no form, is no birth and death, no any elements, but it is. And so that those people, humans, 8.4 million different creatures, and it is very rare, and we are fortunate one that we got a human body. Now, I don't know, the animals also have their birthday and many things. They are also doing someday. But they don't have this intellect. They are just living their life, that's all. They have their discipline. The animals have more discipline than the humans. The animals who will eat what? According to their nature, they will eat only that, not other. Ek bar, once, the king of the Udaipur, and he was eating too much, they were eating meat. So he didn't believe this and that, I don't want to repeat everything. So Guruji said that you should not eat meat. He said, why not? We should be strong. We should lose that and that, like a tiger, that a lions. Guruji said, yes. He said, lions are also eating meat. They are strong. We are Kshatriya, warriors. We should also eat. Guruji said, yes. The tiger eats only meat. Does he eat rice? Does he eat rabdi? Does he eat the chapati? Does he eat the ice cream? Does he eat the mango? No. What does he eat? Only meat. So Guruji said, tiger eats only the meat. Now, dog eats rice, dog eats rabdi, dog eats chapati, dog eats sweet. So, are you tiger or? Please, Guruji, don't go so far. Or the tiger eats only the meat. But you are eating everything, you are not a tiger. Anyhow, every creatures have their principles, they do, but humans are unfortunately eating and behaving in such a way which is not given to by God. Achar, vichar, ahar and vihar. These principles is for the humans. And the rishis, great saints, rishis, they gave certain rules, regulations, principles.
that what humans should do. And they occupied these humans that they don't do stupid things. And so there are many days you should fasting. On that day you should not cut a tree. On that day you should not eat this. That day you should eat only milk, drink, etc., etc. So that humans' brain is occupied with the good qualities, with the good things. Therefore, it is said that God has given to this soul, Jivatma, to the humans. But only when this Jivatma enters into the human body, it means not that can be the holy already. That we don't know what you are thinking, what I am thinking. But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द महाराज कि गुरुजी हमें मंत्र दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे को शिष्य बनाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा कि हाँ कहिए गुरुदेव क्या परीक्षा कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया ले गुरुजी कि किसी ने देखा कि नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं कि उसकी भी पट्टी बांध दे गए वापस जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख के पट्टी बांध दी कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी लेकिन भगवान तो देख रहा है भगवान की आंख मैं कैसे बांधूं तब कहा तू पक्का चेला है बेटा तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे और उसको कहा ला इधर कबूतर को उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है और वो ये है
आप खुद जानते हो।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादि लक्ष्यम एकम अनित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति।

हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kya mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है,

0: कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्य संग। सत इज द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरी थिंग्स, सत संग, देन इट इज इट प्लीज कम विथ मी, वी स्टे ऑल टूगेदर, वी ऑल वी टूगेदर लाइक वन, यस, देन इट इज ओके। अदरवाइज आधो सीटें लाग जैसे दूध आगे यूँ करे, फिर आगे बड़े बड़े आदमी होता है ना, वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस, देन वी हैव ऑल। तो इस सत्य, सत्य क्या है, वो सत्य कहाँ है, वो सत्य कहाँ से आया है। सत्य केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है, वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माई लाइक दिस, इवन दैट देन इट इज सेड यस दिस इज वेरी गुड। सो चाइल्ड इज गोइंग फ्रेंड एंड मदर इज बिहाइंड, ताकि द चिल्ड्रन कैन बी विद मदर वेरी नाइस एंड दैट एंड नॉट गोइंग आउट, देन वॉट हैपन इज समथिंग। सो सत्य वो सत्य होता है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, वही सत्य कहा जा गया है। तो सत्य संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की संग है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तब बेटा बाप जी का, माधवानंद जी का है भाई, माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे come inside and they took the Indians all like this So, don't go home. No school jana dena, kuch karna nahi tha. Only those who are learning very people. So they were in, like doctors and this or this. Otherwise, all people was abhi bhi aapko le rahe hain. Abhi bhi unko barabar nahi jane dete hain. तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे ब्रॉट दिया ऑलरेडी टू इंडिया सो इंडिया का कितना very big, big, big. I have not seen everything. India, itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there? And all have different language. Many, many, many, many languages hai Bharat mein. Lekin, उन्होंने सब करके हिंदू हिंदू बताया और हिंदू कहाँ से हिंदू बहुत दूर से है ये क्या नहीं हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ हाँ है नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट And then it's everywhere, yeah. So I'm coming always with aeroplanes, yes. And I see there, from that I see it's our India, Hamara idhar se, so that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming, don't worry. They are not, but we want to come to here. Swamiji have Maheshwaranand. So, I Maheshwaranand, what do I do? I don't do anything now. But they are doing it for me. Yes, I have done it. But this end I told them, but they didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everybody in the whole countries, whole world countries, keep. Up, they are come and made. So in government, India में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है। वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो। मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो। नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका। लेकिन बोलो कैसा क्या करो? ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहे हो गई वो तो आगे भी पीछे में but now the many people have हमारे disciples here all they comes they are not coming here for working here they are coming for महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी के महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ओनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर एंड हियर माई वॉज स्टेइंग इन माई हाउस एंड देर वॉज वन वेरी नाइस पर्सन इन रूपावास में और वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं था तो धीरे धीरे चलते थे बट ही वॉज नो वेरी ग्रेट स्टैंडिंग वेरी ग्रेट वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ तो बाप जी के वो नहीं थे इतना छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चबल गया हो गया यूँ से भी जगह है हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मैनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास और वो चल रहा है अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना और होना ही चाहिए नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है मनुष्य ही है अब किसने वो नाम दिया उसका वो नाम दिया उसका वो नाम दिया है सबका नाम दिया कि किसका नाम है कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य है तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं आप देख लेना हाँ ठीक है आप मेघवाल हो गरग से हो जो भी हैं सभी हैं वो है ही है लेकिन है वो मेरा मनुष्य मेरे देश का तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा हाँ है कि नहीं प्रेमानंद जी ने हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं ये प्रेमानंद जी अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम इसका नाम ही प्रेम प्रेम की बोलो हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं कितने वृक्ष है अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में मैं गया था कहीं तो ये भी आए एक बार आए दो गए फिर वापस आए और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है प्रेम की बोलो Sridip Narayan Bhagwan
1: ki jai. Srimaravananda ji Sadgurudeva
0: ki jai.
1: Gurudeva ki jai.

0: बड़े श्री नारायण भगवान की, देव पुरुष महादेव की, श्री माधव कृष्ण भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमान श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Takový hluboký tón. Strašný, strašný.

0: भगवान
1: की जय।
0: देव पुरुष महादेव की जय।
1: स्वामी
0: माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।
0: महामंडलेश्वर जी अवतारपुरी जी महाराज की जय। अलकपुरी

जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय।
1: इट वॉज थ्री और फोर,
0: तीन बाबू जी, तीन
1: थ्री फोर फाइव
0: टू मोर
1: No, no, no, now. Good. Anybody come? Pushpa, you or who?
2: She. Hariputji or she.
1: Okay.

0: देवादि देव श्रीदेव पुरी जी महादेवा की जय। राज्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

जय देवादि देव श्री देव पुरुष महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

0: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
0: देवदि देवम श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस।

शिष्याल जी राम जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय। सत गुरुदेव की जय।

अम्बुले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री अकल अलका पुरुष महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद चिस्त गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

बोली श्री प्रणाम भगवान की जय। श्री देवा पुरी समदेव की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वनम जी श्री गुरुदेव की जय। विश्व गुरु मामनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ। गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ, लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं। एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया। ले गुरुजी कि किसी ने देखा? कहने किसी ने नहीं देखा। दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा। वो गया बाथरूम में गया, वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा। पट्टी बांध के गया वापस, फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है, मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी, लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, कि उसकी भी पट्टी बांध दे। गए वापस, जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख के पट्टी बांध दी, कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी, लेकिन भगवान तो देख रहा है, भगवान की आंख मैं कैसे बांधूं? तब कहा तू पक्का चेला है बेटा, तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे। और उसको कहा ला इधर कबूतर को, उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया। तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल। तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है, और वो ये है आप खुद जानते हो। तो भगवान जानता है और आप जानते हो, ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में, इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य का When the human soul enters into the human body, God gives us the freedom. But then it is like that you will be bounded to the karma. And that karma, what we call the action. Where the action, it will be reaction. Or where the reaction, there will be the action. Good reaction is good action. Good action is good reaction. Bad action, good and bad. Paap and punya. Keval manushya ke saath mein hota hai. The manushya, the human, if they do not follow the principles, then the rishi munis, they gave this rules, Purnima, Igyarasa, Amausya, etc., etc. All these days is called the holy, and on this day you should not do. And so, in India, in our culture, ancient cultures, now they are different. In this Kali Yuga, there are more different religions. And every religion they have made themselves. So, there is a call man-made God, man-made religion, and God-made religions. The God-made principles and man-made this. Man-made world is not perfect, but God-made world is a perfect. Therefore, in these principles, a human day and night, by each and every step, by each and every look, we should know what I am doing, what I am thinking, so that I will be

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेस्ड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, here in this hall, in our beautiful ashram, and all dear ones round the world, welcome. For someone of you is good morning, and for someone is good evening, and someone have lunch. So best is to say Hari Om. Welcome. Today will be the meditation